हाय दोस्तों, आपके आरजे मॉन्टवी 100.7 एफएम जोन में आप सबके साथ। आज संडे का दिन है, आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और दोस्तों, इसी तरह से हम और आप मिलकर के स्तुति गीतों का आनंद लेंगे। और ये सारे स्तुति गीत जो है बहुत ही मन भाने वाले हैं, मन को छूने वाले, और साथ ही साथ क्या है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत बहुत लाभदायक है। सो दोस्तों, चलना चाहूंगी मैं गीतों की ओर। तुरंत ही लुआंग मॉल वेंग शांग कौशन मसीही संगति स्तुति के गायन मंडल जो है, इनके द्वारा गाए गए सृष्टि है तेरी कविता, इस गीत की ओर चलते हैं। और वैसे आज मदर्स डे है, सभी माताओं को मैं मदर्स डे के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। सो ऑल द मदर्स, हैप्पी मदर्स डे। और ये रहा दोस्तों आप सबके लिए गीत।

दोस्तों, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही मन को छू लेने वाला गीत, गुमराह रास्ते। गुमराह रास्ते में आदमी जो है, मनुष्य जो है, भटक जाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक राह जो सही है वो है ईश्वर के रास्ते, यानी कि उसे हम अपनाएंगे तो हम कतई भी कभी भी गलत रास्तों पर भटक के नहीं रहेंगे। हम सब गुमराह हैं, मगर हमें बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे, और यीशु मसीह को ध्यान में रखते हुए अगर इस जीवन में भी हम कदम लेंगे तो कभी भी हम गलत नहीं हो सकते हैं। चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत तंत्रिल पास्टर बियल मसीह संगति द्वारा गाया गया अनंत काल गीत रहेगा, और ठीक इसके पहले जो गुमराह गीत हमने सुना था, बोंकोन मसीही संगति द्वारा गाया गया बहुत ही लोकप्रिय गीत

था, और सबसे पहला गीत था लुआंगमाल वेंगखंग के, जो मैं कह चुकी थी। अभी चलते हैं फिलहाल अनंत काल है गीत का बोल, और इस गीत की ओर चलते हैं।

दोस्तों, गीत था अनंत काल, कंट्री पास्तर बियल मसीही संगति द्वारा गाया गया। मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ SMS जो है, वी कुंतिया राय राते ओम हर के बिन की ओर से, इन्होंने कहा है, आरजे उमान पुए हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रोनते दे ना अपने वी कुंतिया इरोनज्याक मोई एम एम बक्सिया। इन्होंने देवनागरी लिपि में यहाँ पे हमें दिया है मैसेज, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने पूरा देवनागरी लिपि में हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लिख करके हमें भेजा है। मेरे लिए बहुत बहुत खुश की बात है, खुशी की बात है। वी कुंगते कलोम एम एम आ इरोनजिया दिख खप नल खप बोक्सिया मो चौन देवनागिरी लिपि हिंदी हिंदी टोंगे इन रोनजिया दे खप बोक्सिया चौन वो इन ही नोते नी नी आ नोते जोंग जोंग नोते नी Tibai kabuk vekte wa chan vi kung tia hian Happy Mother's Day ti in tibai min ron bu ka kalom le ane chan kung tia i ngay thak atan kan ngay thak tur song song te itan special aim aim in karon hlan che o ha chal na chahongi dosto agle geet ki aur agla geet रहेगा तेरे चरणों में, ईश्वर के चरणों में जा गिरना ही सबसे बेहतर है, हर मोड़ पे और हर सिचुएशंस में, है ना। किसी भी तरह की समस्या हो या ना हो, ठीक है ना दोस्तों। संकट दुख सुख दोनों स्थितियों में, हर स्थिति में क्या है, ईश्वर के चरणों में जा गिरना, उनके सामने झुकना, जो है हमेशा हमेशा के लिए सबके लिए अच्छा होता है। बोंगोन मसीही संगति द्वारा गाया गया तेरे चरणों में, ये रहा, दीजिएगा आनंद।

ईश्वर के चरणों में जाने या शरण लेने का अर्थ केवल भौतिक रूप से मंदिर जाना नहीं या चर्च जाना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से खुद को परमात्मा को समर्पित कर देना होता है दोस्तों। और इससे क्या होता है पता है आप सबको? अपने अहंकार, चिंताओं, कर्मों के फलों को ईश्वर को सौंपना और ईश्वर के चरणों में जा करके क्या है, पूर्ण समर्पण करना, अहंकार को त्याग देना, कर्मों को ईश्वर अर्पण करना, प्रार्थना और आराधना करना, मन की शांति प्राप्त करना और उनको पुकारना, और फिर आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी क्या है, ये जो है हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। चलना चाहूँगी अगले गीत की ओर। अगला गीत आप सबके लिए ये रहा तंत्रिल पास्तुर ब्याल मसीह संगति द्वारा गाया गया यीशु मसीह गीत है आप सबके लिए मेरी ओर से।

मैं चलना चाहूंगी यहाँ SMS की ओर। SMS आया है के गई थे होल्ड्रिंग की ओर से, इन्होंने हमें शुभकामना दी है और इन्होंने कहा है नूतनी पुआलिन चिबैले रोंतिया के गई थे होल्ड्रिंग कवा हल्लोम तेलुल एम वो इन्नी मदर्स डे यानी आ जानिन है आ माता जी को नमस्कार, आप माता जी को नमस्कार, यानी कि आज का दिन जैसे कि मदर्स डे है, इन्होंने हमें हिंदी में भी शुभकामना दी है और साथ ही साथ इन्होंने सबके लिए भी यहाँ पे शुभकामना दी है, ठीक है ना। हैप्पी मदर्स डे कह करके हमें हिंदी में लिखा है, नमस्कार दिया है और साथ ही साथ आप सबको

भिन्न होने माधस जी के नाम पे शुभकामना दी है के गई थी अखुल रिंग माधस दे पॉलिन मिनरन चिबया चान मिनरन नमस्कार कवाहन लोम ते लुल एम चान इन के गई थी अमिन लोंगाई था आ लो एंगे ने ए इंगाई था गन गई था ले तोर ही इतान लियाओ लियाओ स्पेशल एम एम इन करों डेडिकेट चेन विन ही नो ते निपोई मो तक में निया चुमिया चान इन हेवी कुंग ते ने मिन रन जिबाई नाप नापा कवहन लोम तक एम तेरो चान वो इन निलिम तका गन मन पो बे से यंग चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत कम सुंदर नहीं बहुत बहुत सुंदर है दोस्तों, बोंकोन मसीही संगति द्वारा गाया गया लहर लहर में गीत आप सबके दिए।

अगले गीत की ओर तुरंत चलना चाहूंगी दोस्तों। तंत्रिल पास्तोर बियल मसीह संगति द्वारा गाया गया दुख मायूस गीत जो है आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, यीशु नाम गीत था। वाकई में बहुत बहुत सुंदर। और इसी तरह हम अंतिम गीत की ओर जाने की कोशिश करेंगे। आपके आरजे 100.7 एफएम जोन में आप सबके साथ अंतिम गीत हमारा रहेगा, तो प्यार का सागर। ये गीत जो है आप सबके लिए मैं डेडिकेट करती हूँ दोस्तों। और इस गीत के साथ साथ मैं आपसे इस वक्त विदा लूंगी। 10:50 में मैं आप सबके लिए लौट आऊंगी और आपकी आरजी सांगते मेरे बाद आप सबका मन बहलाने के लिए आ रही हैं। ये रहा गीत आप सबके लिए।

आया है स्तुति गीत का समय आप सबके लिए आपके आर्य मोहन पी 100.7 FM जो में। दोस्तों, मैं सबसे पहले गीत के तौर पे इस वक्त आप सबके लिए प्ले करना चाहूंगी आज और प्रभु गीत, दिवित सिंगर्स द्वारा गाया गया बहुत ही सुंदर सा गीत है। ये गीत आप सबके लिए मेरी ओर से।

आज जो है पेंटिकोस्ट संडे है, भारत में सभी जगह आज रविवार का दिन है। क्रिश्चियन के लिए क्या है ये पेंटिकोस्ट संडे है। सो पेंटिकोस्ट संडे के उपलक्ष्य में भी आप सबको मैं क्या है शुभकामना देना चाहूंगी दोस्तों। और इसी तरह से हम गीत की ओर आगे बढ़ेंगे और गीतों का आनंद लेते रहेंगे। गीतों का आनंद लेते वक्त हम ईश्वर की ओर अपने मन को अर्पण करें, ये मैं कहना चाहूंगी। और इसी तरह यहाँ एक गीत आप सबके लिए, पवित्र आत्मा आ, ये गीत जो है आप सबके लिए डेडिकेट कर रही हूँ।

ऐसे में फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का, दोस्तों स्तुति गीत का आनंद लेते हैं, चलते हैं गीत की ओर। गीत जो है सबसे पहले इस वक्त इलेक्ट्रिक वेग मसीही संगति द्वारा गाया गया प्रभु मेरे गीत आप सबके लिए डेडिकेट कर रही हूँ। चलिए चलते हैं गीत की ओर और लेते हैं आनंद।

हमारे सृजनहार वाक्य में प्रभु ही है और कोई नहीं है ना दोस्तों। और इस जहां में, इस जगत में, इस दुनिया में हमारे ईश्वर का रूप जो है हमारे लिए माता पिता है। और आज जैसे कि मातृ दिवस है, माँ के महत्व को आए हम सब समझ लेते हैं और फिर अपनी अपनी माँ को आइए क्या है और ज्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश हम सब करते हैं। चलना चाहूंगी अगले गीत की, और अगला गीत विजय बेनेडिक्ट की आवाज में हम सुनेंगे।

दोस्तों, विजय बेनेडिक्ट की आवाज में यीशु तू है महान गीत था, वाकई में बहुत बहुत सुंदर। मैं चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत जो है विजय बेनेडिक्ट की आवाजों में, तो हमने बहुत सारे गीत सुन चुके हैं, शेल्डन बंगेरा द्वारा गाया गया ये गीत।

नीले आसमान के पार जाएंगे, रहता वहां मेरा यीशु गीत। बहुत सुंदर, रॉबिन्सन शालू, जूलियस अशोका, इन सब की आवाजों में था। और दोस्तों, अब हम जाएंगे नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप द्वारा गाया गया यीशु अपने साथ इस गीत की ओर चलते हैं। ये रहा आप सबके लिए।

नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप द्वारा गाया गया गीत था। अब हम चलेंगे चानमारी मसीह ही संगति क्वायर द्वारा गाया गया एक बहुत ही लोकप्रिय गीत की ओर।

विकसित भारत चाने सबली पसरी लोटलीना मिजोरम सरकार चो मिपुई सरकार सरकार थाले लंग लंग कल पुयिन स्टेट चो मसोन रोल खाई तक ओम थे नान थे तो पछुआते सुयिन लुंगले मिजोरम स्टेट यूनिवर्सिटी दिन तुर रोम मनले मुनसांग संग मसोन ना थो कल मेकते मिजोरम एनसीसी फेस्ट एंड पैरासेलिंग कैंप सबेर छिम लमा बोय से दचो अनेम हेतुअनी अतिबो Central YMA General Secretary Professor Malsom Yanachuan Rui Lau Dau Street Campaign and Nei Zumipui Nena Rui Lau Thad Lau Zia Zirtina Ani Tiasoi Nimin Khan Central YMA Bultimin Aizol Kapui Mun Shang Shang Rui Lau Dau Street Campaign Nei Ni A Akashvani News Aizol Zona Changin Professor Malsom Yanachuan Mipui Ten Rui Lau Thad Lau Zia Le Rui Lau Dau Apoi Mo Zian Shia Da Apoi Mo Thu Soya YMA Branch Shang Shang Ten An Mani Huam Chu Nga Thay Top An Chua Thu Le Rui Lau Le Tive Lau Ten An Ti Chin Lau Nan Te Ati Chin Ten An Sim Thay Nan Te Azuar An Klem Thay Nan Te Thay Top An Chua Zel Don Te Soya Ni Central YMA Chua Rui Lau Dau Ko Ga Thay Top Chua Tu Le Ma Ni Thay Na Zon Thiva Rui Lau Dau Ko Ga Pen Chua Tu Ni Mipui Ten So Ma Roman Dan Chua Street Campaign Hi Meini Som Paluk Indrini Zing Dar Sri La Chan Ve Hian Pun Riata Ne Le Tu Ra Ni Central YMA Noi Rui Lau Dau Pol Central Anti-Drug Squad Chuan Tun Tla Ni Kata Changan Di Min Khen Khan Rui Lau Inga Mozart Le Rui Lau Kai Noi Ya Ni Som Li Pan Ni An Man To Ani Chuti Zong Chu Chan Chin Thar Kan Puan Thay Chua Ni

जय जय नाम, गांव में शुभ हो शाम। बहुत बहुत सुंदर गीत। वाकई में यीशु की आराधना मसीही विश्वास में उद्धारकर्ता के प्रति जैसे प्रेम, समर्पण और भक्ति की जीवन शैली है दोस्तों, जो केवल गीतों तक सीमित नहीं बल्कि हर कार्य में उनके प्रति सम्मान जो है प्रकट करती है। इसीलिए जरूरी है यह पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर के आत्मा और सच्चाई से ईश्वर के प्रति आदर, ठीक है ना दोस्तों, व्यक्त करने का एक तरीका है। और अभी अभी हमने बहुत ही सुंदर तरीके से यीशु की आराधना जो है जय जय नाम, हेल जीसस नेम, शेल्डन बंगेरा और उनके साथियों द्वारा सुना। बहुत बहुत सुंदर। मैं चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत कम सुंदर नहीं, हम तुझ में बने रहे। ये गीत जो है मुझे बहुत बहुत पसंद है और इस गीत को आप भी पसंद करेंगे मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। आप सबके लिए ये रहा।

दोस्तों, गीत था अंकुर की आवाज में हम तुझ में बने रहें। मैं एक दो शब्द कहना चाहूंगी। आराधना करने का एक जरिया अवश्य है भजन और संगीत, स्तुति और आराधना के गीतों का गायन करना अच्छा होता है हम सबको। और प्रार्थना जो है, शांत स्थान पर यीशु की उपस्थिति में समय बिताना बहुत ही अच्छा होता है, और इसी तरह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, ये भी ईश्वर को आराधना करने के समान है। इसीलिए हम इन बातों को ना भूलें। प्रार्थना, भजन, संगीत, आज्ञाकारिता बनना और सेवा का भाव मन में रखना, ये सब जो है बहुत जरूरी है। अगले गीत की ओर जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी SMS किन किन लोगों ने हमें भेजा है। यहाँ SMS दिए हैं जितेंद्र दास जी ने। इन्होंने कहा है, आकाशवाणी, हाउ आर यू? आकाशवाणी इज गुड, वेल एंड फाइन। ओके हितेंद्र दास, आप हमें सुन रहे हैं इसीलिए अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम आज स्तुति गीतों का आनंद ले रहे हैं, और जितने भी गीत हम सुनने जा रहे हैं आप

के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। और यहाँ जेल जाम की ओर से इन्होंने कहा है, आरजे मा मन पुई गई उमनु गुड इवनिंग रंते नेक्स्ट नेक्स्ट सॉन्ग इतान छ रंते ने जेल जाम हियान ओ कफन लोम तक एम चोन तेन गई थाक ले तुरते इतान करन तिले द्वे अंगा चोन लाही चान मारी जायपोल का तेलवे ला यमी इंगे मेघा हनप्ले वे kacha ka chubang chuan kan play do na ni a he hi ke ma tel ve na nge ani ye geet jo hai isme main bhi shamil hu aap sab ke liye ye gayan mandali chan mare masih sangati gayan mandali dwara gaya gaya masih sangati ke gayan mandali mein main bhi shamil thi chaliye chalte hain geet ki aur ye raha aap sab ke liye।

अगले गीत की ओर तुरंत चलते हैं दोस्तों। अगला गीत कम सुंदर नहीं, ये भी बहुत बहुत सुंदर है। आजा प्रभु गीत, सान मारे मसीही संगति द्वारा गाया गया एक और गीत।

दोस्तों, गीत में चांद सूरज तारे भी, चांद तारे सूरज भी तेरे सरगम गाए, है ना, तेरे सरगम गाते हैं, इस तरह था। यानी कि चांद सूरज तारे ये सभी सृष्टि जो है ये भी ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के की सृष्टि पर उनके सरगम गाते हैं। तो इसी तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि हम मनुष्य उनकी आराधना क्या पूरे मन से करते हैं या नहीं। चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत कम सुंदर नहीं, बहुत बहुत सुंदर है। ये गीत जो है आप सबके लिए डेडिकेट कर रही हूँ, और ये गीत है तू है मेरा।

दोस्तों, गीत था तू ही मेरा, बहुत बहुत मन को छू लेने वाले गीत थे सभी के सभी। अब अंतिम गीत की ओर जाने का समय आ गया है दोस्तों। ये रहा भारत गीत। इस गीत को मैं आप सबके लिए छोड़ूंगी और आपकी आरजे मन पे 100.7 FM जोर में आप सबके साथ। जब तक मैं ना लौटू तब तक के लिए मेरे फिर से इंतजार कीजिएगा। ये यशवा बैंड द्वारा गाया गया बहुत ही सुंदर सा गीत है एल्बम रॉक एंड रोल का। ये रहा आप सबके लिए।

0: دوستو اسی طرح سے ہمارا یہ فرسٹ ٹرانسمیشن ختم ہوتا ہے آپ کے آر جو مون پہ 100.7 ایف ایم زو اوئے میں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, خوش رکھیے اور ہمیشہ سواستھ رہیے گا. بائے بائے, ٹیک کیئر آپ سب. اور اسی طرح میں میزو میں اناؤنسمنٹ کرتی ہوں ہی آکاش وانی ایف ایم زو اویزا پوائنٹ پسری انی آ کے ہلل مون پوئی کھولشنگ آر جو مون پوئی کنی انجینئر ڈیوٹی ہلل رن سن مار انیا کن فرسٹ ٹرانسمیشن سو ہتا دونا ہیاں کن لو زو لے تا آ دار لی لے چن ویا چن انی لینگا زو اویزا ایف ایم زو اویزا پوائنٹ پسری ہے جو چمیا چوانین in zawa in longai thle turin kan hansong hal chu ni sila hlim taka lo oma dam taka lo om zel turin du sakna kan hlan vek chonga chatu zong zong te in chu kan lo ne
1: is par kaam karne wali aapki ye mahatvapurn gativiti in sab ki bhumika bahut bahut ahem hai.
2: श्री मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है. आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके. तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी. राज्य सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के अनुसार यह कार्यक्रम लखनऊ के जनभवन में 3:30 बजे से आयोजित किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा. गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रूपये से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्मी तराने। अगला नगमा है फिल्म काला पत्थर से और स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

0: मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अब वक्त हो रहा है हमारे बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स।
1: Hey, Akashwani, Aizol, and Ituna, Swan Zai Paul, Tehlerem, Kangai Tanga, Tuntumahian, Territorial Song Sersle, North Van Lipe High, Pastor Bill Zai Paul, Larem Kangai Tadona, Amasai, North Van Lipe High, Pastor Bill Zai Paulin, Kuvel Shi Omitanti, Landry Milongai Tang.

नमस्कार, आदाब, आभार। आप सभी का स्वागत करती हूँ एफएम जो 100.7 पर। आर के आर जय मोहिते आपके साथ है। बहुत ही सुंदर हिंदी स्तुति गीत सुनाने आपको। चलिए दोस्तों, आज रविवार का दिन है, आज रविवार की शाम हो गई है। बहुत ही सुनहरी और बहुत ही स्वच्छ हवा बह भी रही होगी बाहर। स्टूडियो के बाहर क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल स्टूडियो के अंदर में तो हवा तो बहुत ही अच्छे तरह से बह रही है। चलिए दोस्तों, आज की बहुत ही सुंदर शाम में मैं आपको आपके सामने लाई हूँ तीन स्तुति गीत, जो कि है गाए हुए दोरपू वेंगथर मसीही संगति जायपो के द्वारा, बोंकोन मसीही संगति के द्वारा और सीओ स्वरम खोर के द्वारा। तो पहला स्तुति गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोरपू वेंगथर मसीही संगति के द्वारा, तू प्यार का सागर है। हमारी तरफ दोस्तों अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए, रविवार की शाम है तो ईश्वर की स्तुति करेंगे इस शाम को हम और आप। चलिए मन की शुद्धि करते हैं, दिन भर की थकान से मुक्त हो जाएंगे और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें।

तो दोस्तों, आप गीत सुन रहे हैं तू प्यार किया मुझको। बचपन से लेकर अब तक अपनी सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। उसमें अगर हम झांके देखें तो ईश्वर का प्यार हर कड़ी में, हमारे जीवन के हर कड़ी में दिखाई देता है ना। कैसा है आपका इस मामले में आइडिया, हमें जरूर बता दीजिए अपने संदेशों के द्वारा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले गीत की ओर। मसीह संगीति खोयर्स बोंगकोन की तरफ से है ये गीत भी। मुझे भी बहुत बहुत ही पसंद है। विलंब हम ना करेंगे।

तो विलंब हम ना करेंगे मसीह संगति खोर बोंगकोन के द्वारा थी। बढ़ते अगले गीत की ओर सीओ सोराम खोर के द्वारा यीशु ने।

तो ये थी दोस्तों सीओ स्वरम कोयर के द्वारा इशू ने। हम बढ़ते अगले गीत की ओर। जी हाँ, यहाँ पे आपके प्यारे प्यार भरे संदेश भी आने लगे हैं। वी कुंग थे हमें लिखते हैं, आर जा मोहिते माधुर से चिबाई ओ दिवती नुआ वंग वंग रोंतिया ले कई कभान लोम तक एम नंग पो इन सफा इन लोग तो जोंग जोंग ते आप सभी को। आज माँ का दिन है तो सभी को मदर्स डे चिबाई वोंग वोंग उले चुआन हाकते अपा बिल खुथिर ने संदेश दिया है। लिखते आरजे ताइलम चिबाई ले जानी दिउती हुन नोम तका हुन इमन थे ना दू सकना लान चुंग से इन इला प्ले ले तुर खा मोरी साई लो ओमेगा सांगते अमेंग मोईते पार पारी पू इतान कलाने रोंते निये मैं मोई ते चु ngakte pa bi khathir chu ani na ron than sak che ni chu yaha pe sandesh ha me moi te ka likhte he ar ja moi te namaste duty nom le namaste namaste agla gi jo he aap sabhi ke naam jinhone me sandesh diya hai aur jinke liye unhone sandesh arpit kiye geet ko arpit kiye hain। तो बढ़ते अगले गीत की ओर। दोरपुई वेंथर मसीह संगति के द्वारा यीशु मसीह।

हम गाए होसरा ये है दिवसो यीशु मसीही दोरपी वेंथर मसीह संगति के द्वारा ईश्वर की महिमा का जय जयकार हुआ है इस गीत में। हम बढ़ते अगले गीत की और मसीह संगति को और बोंकोन के द्वारा खूबसूरत और यहाँ पे ओमेगा सांते का संदेश आया है जो हमें लिखते हैं अमोई ते जानिन श्रीसेल न ठा ने या द्यूती तुरिन दूसक न कहला न चे इप्ले तुरखा हा कपा बिल को थीर ते छुन को तानो बिग तकिन तान लिया उलिया हुन मन नाम ले रंती ने ओमेगा सांते का भन लोम छीन तके। ओ ये जो गीत है जो मैं पेश करने जा रही हूँ खास करके ओमेगा सांते के नाम खूबसूरत तीचमोई थिलमोई सैना हनी। ओ

सुन रहे हैं आप FM 107.7, वक्त बिता रहे इस वक्त अपनी आरजे मोहिती के साथ। तो दोस्तों, इस खंड का आखिरी गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सीओ स्वराम खोयर के द्वारा है छुटकारा। और दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप अपना वक्त बिताएंगे अपनी आरजे के साथ, अंग्रेजी की बहुत बहुत ही सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे और हमारी और आपकी फिर से बातें होगी 6:40 बजे।

स्वागतम करते हैं आप सभी का FM जो 107 पर। दोस्तों, ये जो खंड है ये हमारा दूसरा खंड है और मैं इसमें आपको सुनाने वाली हूँ दोस्तुति गीत। हमारे पास वक्त बहुत बहुत ही कम है और मैं चाहूंगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा गीत सुनाऊं। तो चलिए दोस्तों, पहला गीत है रमनुन्नोर मसीही संगीति जयपुर के द्वारा, दिल को नाचैन।

तो कैसा लगा दोस्तों आपको गीत? अच्छा है ना, मन की शुद्धि हो गई होगी। चलिए बढ़ते अगले गीत की ओर। तो इकबाल मसीही संगति बियाल साहिब की तरफ से है ये गीत, प्रभु मेरे सृजन हो।

प्रभु मेरे सृजन हो ये थी दोस्तों तुकवाल तुकवाल मसीही संगति बियाल साई पोल की तरफ से बढ़ते अगले गीत की ओर रमधुन नोट मसीही संगति साई पोल के द्वारा शाम

रही है रम्द नॉर्थ मसीह संगति जायपोल के द्वारा थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर, क्योंकि और ये कहना चाहूंगी ये जो गीत है हमारे इस खंड का आखिरी गीत होगा। हम वापस आएंगे 9 बजे बहुत बहुत ही सुंदर स्तुति गीतों के साथ, और अब से थोड़ी देर बाद आप अपना वर्ड बिताएंगे अपनी आरजे रेमपुई के साथ। तो ओमेगा सांगते आपका संदेश मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं खोम फो तो हन मन नोम ले रनते हैं ओ इन भान गई ओम दोन तक मी बान वे ले रन दूले खाल कन बे से ओ सोआनी मिन लो इन खोम के वेला ngakte pa bil ko thir ki taraf se he am arjya moi tu namaste ila play le tur khala hi tabi kung te anguri sai lo par pari put tan ka hlane run tini o in zawai

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम जॉय 100.7 पर। जी दोस्तों, ये हमारा तीसरा और आखिरी खंड है। आप इस वक्त अपना बदा वक्त बिता रहे अपनी आरजिया मोइती के साथ उसके अंतिम खंड पर। दोस्तों, इस खंड में मैं आपके सामने लाई हूँ कुछ स्तुति गीत द विश्वासी और ललटन पॉइंट पार्टी के द्वारा। तो पहला गीत आपको सुनाऊंगी द विश्वासी के द्वारा, मेरे गुनाह की।

तो दोस्तों सुन रहे थे आप द विश्वासी के द्वारा मेरे गुना की। बढ़ते अगले गीत की ओ ललटन पुया इन पार्टी के द्वारा मिलकर चलिए। और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं, देखकर मुझे बहुत बहुत ही खुशी हुई। पहला सबसे पहला दुर्गेश नगनपुरे और फैमिली के तरफ से गुड इवनिंग अर्जे, नमस्कार नमस्कार। ये जो अगला गीत है दुर्गेश, आपके और आपके परिवारों के नाम करना चाहूंगी। और नागते पाबिल खोथिर की तरफ से है अर्जे, प्ले ले तुरखा मिंग मोई तेया गुड बॉय वी कुंग ते ओमिका संग ते पार पारी पु मुरी साई लवे तान कलाने रोंती ओ नागते पाबिल खोथिर तान पोखानिन ले अथन सकते तान खन गन लान गाले। ओ तो सुनते हैं ललटन पुइन पार्टी के द्वारा मिलकर चले।

तो ये थी द सुल्तान पोएम पार्टी के द्वारा मिलकर चले। अगला गीत जो मैं आपको पेश करने जा रही हूँ यीशु तू, और संदेश आया है इसके बीच एक और संदेश पढ़ते ललजामा जेलजामा की तरफ से लिखते आज हम होते गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और मेरे जाने का वक्त आने वाला है तो इसमें हम आपको करेंगे गुड नाइट शुभ रात्रि तो बाद में कहना ही पड़ेगा मुझे। ओमेगा सांते की तरफ से लिखते हैं है ये संदेश, लिखते हैं वो मोहते इलो लहो एम लो मो इलो ड्यूटी क्लुआंग एम ओ हे कन लो लहाक ट्रांग ट्रांग चे नि और लिखते हैं इलो इप्ले तो खा हाक ते पा बिल खो थी ते छूंग क्वा तान ओ चुआन आर जे फिल ले ओ मेरी तारीफ की है बहुत बहुत शुक्रिया। और इतान लिया उलिया और अंतिया ओमेगा सांगते और जेल जामा आप दोनों के नाम इस गीत को अर्पित करना चाहूंगी।

बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। दोस्तों हमको उम्मीद है आपको ये गीत भी जरूर जरूर पसंद आया होगा। इस गीत को हम अर्पित करना चाहेंगे जो हमारे श्रोताओं, जैसे आज की रात जो हमें सुन रहे हैं, कोई ऑफिस में तो कोई गए नहीं होंगे अंदाजा है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो रविवार को हमेशा पूरा ऑफिस बंद रहता है। तो जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं अस्पताल में, जो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आप सभी के नाम करना चाहूँगी। और जो अपने बिस्तर में लेटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी सभी के नाम, अपने परिवारों के साथ जो हमें सुन रहे हैं, आप सभी के नाम भी। तो अगला गीत हम सुना रहे हैं, तू ही प्रभु है कलवरी का प्रेम।

तो सुन रहे हैं आप FM जोवे 100.7। मैं आपके आरजे मोहिते ही अलविदा लेते हैं आपसे, आप सभी से बातें करते हुए, आपसे साथ गीत स्तुति गीत सुनते हुए हमें भी बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और वक्त यूँ ही निकल गया, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जाने से पहले एक और गीत आपको जरूर सुनाकर जाऊंगी। और ये मैं कहना चाहूंगी कि अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आरजेस चॉइस मिसो डिवोशनल। और ये जो अगला खंड है इसमें FB में लाइव होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि फेसबुक में ऑल इंडिया रेडियो आइजोल खालो फॉलो उला ताखानिन तू ना हियानिन आरजे पुईते तेनेन लाइव आरजे पुईते खानुन लाइव तो नी इन तू ना खानिन FB आ खान लू तुला चुआनिन ऑल इंडिया रेडियो आइजोल खा पेज खाइन लोब लाइक चुआनिन पोस्टर अमापियां खाति खानिन रोन हाईलाइट जेल दोन रोन जैक छो जेल दोन तुना लाइव कन एन दुनी चुन FB आ लू टन तो इला तिरो तुना टकर लौटे नुआ रोन लाइव दोन नि। तो दोस्तों जाने से पहले जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत बहुत बहुत ही प्यारा गीत है तेरी महिमा। इस गीत के साथ आपकी अर्जी हमारी आपसे अलविदा लेती है आप सभी से। तेरी महिमा, शुभ रात्रि।